0: आवाज़ तहजीक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ तहजीक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: से प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज ताजी की हिंदी भाग की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प पायान विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के दीते राम जो प्रोड्यूसर शेर अली वाली शेर आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे।

नमस्ते प्यारे सुनने वालों, आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। अभी हमने तय किया कि आपको तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के आर्थिक सहयोग के बारे में जानकारी प्रस्तुत करेंगे, हमारे साथ रहे। तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग हाल के वर्षों में दोनों देशों की विदेश नीति और आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण दिशाओं में से एक बन गया है। दोनों देशों के संबंध जो पहले कुछ हद तक सीमित थे, आज मित्रता, अच्छे पड़ोसी संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के आधार पर विकसित हो रहे हैं। विशेष रूप से खुले द्वार की नीति और क्षेत्रीय सहयोग के विस्तार के बाद उद्यमशीलता गतिविधियों, निवेश और वस्तुओं के आदान प्रदान में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। आर्थिक संबंधों के विकास का एक प्रमुख संकेतक द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में वृद्धि है। आज तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्यात और आयात कर रहे हैं। तजिकिस्तान मुख्यतः बिजली, कृषि उत्पाद, एल्यूमिनियम, पहल सब्जियां तथा कुछ औद्योगिक उत्पाद उज्बेकिस्तान को निर्यात करता है। दूसरी ओर उज्बेकिस्तान तजिकिस्तान को मशीनरी, औद्योगिक उत्पाद, निर्माण सामग्री, ईंधन और खाद्य सामग्री निर्यात करता है। सीमा संबंधों में सुधार, सीमा चौकियों का खुलना और लोगों की आवाजाही

किसी प्रकार तजकिस्तान में भी उज्बेक नागरिकों और कंपनियों के निवेश से अनेक उद्यम स्थापित किए गए हैं। ऐसे उद्यमों की गतिविधियां नए रोजगार सृजन, उत्पादन में वृद्धि और उद्यमशीलता के विकास में सहायक है। आधिकारिक अंकारों के अनुसार उज्बेकिस्तान में तजकिस्तान के कानूनी और निजी व्यक्तियों के भागीदारी वाले 400 से अधिक उद्यम पंजीकृत है। इनमें से अधिकांश व्यापार, उद्योग, निर्माण और संचार क्षेत्रों में कार्यरत है। इसके साथ ही तजकिस्तान में भी उज्बेक नागरिकों और कंपनियों के निवेश से 150 से अधिक संस्थाएं सक्रिय है। ये अंकरें इस बात का प्रमाण है कि दोनों देशों के उद्यमी एक दूसरे के बाजारों में गहरी रुचि रखते हैं और अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए नए अवसरों का उपयोग कर रहे हैं। आर्थिक सहयोग के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक व्यापक बाजार और निवेश के अनुकूल अवसरों की उपलब्धता है। उज्बेकिस्तान की जनसंख्या 3,70,00,000 से अधिक है, जो ताजिक उद्यमियों के लिए एक विशाल उपभोक्ता बाजार का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए अनेक ताजिक कंपनियां उज्बेकिस्तान में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रही है और अपने उत्पादों तथा सेवाओं को पड़ोसी देश के बाजार में पहुँचाने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर उज्बेक उद्यमी भी तजकिस्तान के बाजार में रुचि रखते हैं, क्योंकि तजकिस्तान प्राकृतिक संसाधनों, जल विद्युत क्षमता और महत्वपूर्ण पारगमन स्थिति से समृद्ध है। औद्योगिक क्षेत्र भी आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तजकिस्तान और उज्बेकिस्तान निर्माण सामग्री, वस्त्र उद्योग, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण तथा औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्रों में संयुक्त सहयोग का विस्तार कर रहे हैं। संयुक्त औद्योगिक उद्यमों की स्थापना, कच्चे माल के प्रभावी उपयोग और प्रतिस्पर्धी उत्पादन के विकास में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का विशेष महत्व है। तजकिस्तान के पास विशाल जल विद्युत संसाधन है और वो उज्बेकिस्तान सहित पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात कर सकता है। इस क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को मजबूत करता है। साथ ही दोनों देशों के बीच परिवहन और पारगमन नेटवर्क का विकास, माल और वस्तुओं के परिवहन को बढ़ाने तथा आर्थिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायक है। तजकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और एकीकरण को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और लाभकारी संबंध व्यापार, निवेश, रोजगार सृजन और लोगों के जीवन स्तर में सुधार को प्रोत्साहित करते हैं। आज तजकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच आर्थिक और व्यापारी संबंध साधारण वस्तु विनिमय से आगे बढ़कर पूंजी एकीकरण, संयुक्त उद्यमों की स्थापना और रणनीति साझेदारी के स्तर तक पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के विशाल आर्थिक संभावनाओं और राजनीतिक इच्छा शक्ति को देखते हुए ये अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में तजकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच आर्थिक और निवेश संबंध और अधिक विस्तारित होंगे। अंतरराज्यीय संबंधों के विकास के आधुनिक चरण में खुले द्वार की नीति को लागू करने तथा उद्यमशीलता के विस्तार और पारस्परिक निवेश में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने के परिणाम स्वरूप तजकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच आर्थिक और व्यापारी सहयोग गुणात्मक रूप से नए स्तर तथा रणनीतिक साझेदारी तक पहुंच गया है। आजकल संयुक्त उद्यमों की संख्या और पड़ोसी देशों के बाजारों में घरेलू व्यवसायों की पहुँच लगातार बढ़ रही है। ये कारक आर्थिक प्रबंधन प्रणाली में किए गए संरचना सुधारों के परिणाम स्वरूप संभव हुए हैं। स्टेट कमिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ उज्बेकिस्तान के अंकारों के अनुसार 1 फरवरी 2026 तक पड़ोसी गणराज्य में तजकिस्तान के कानूनी और निजी व्यक्तियों की पूंजी की भागीदारी वाले 410 उद्यम पंजीकृत किए गए हैं। इनमें 308 सीमित दायित्व कंपनियां और 102 संयुक्त उद्यम शामिल है। इन उद्यमों में से 144 व्यापार क्षेत्र, 98 उद्योग, 43 निर्माण तथा 33 सूचना और संचार क्षेत्र में कार्यरत है। ये उल्लेख करना उचित होगी कि उज्बेकिस्तान में तजकिस्तान के नागरिकों की भागीदारी वाले उद्यमों की अधिक संख्या का मुख्य

कारण सामान्य आर्थिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। तुलना के लिए उज्बेकिस्तान की जनसंख्या 3,77,00,000 से अधिक है, इसलिए पड़ोसी देश में उद्यमशीलता गतिविधियों के विकास के लिए अवसर और परिस्थितियां हमारे गणराज्य की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। इसी कारण घरेलू कंपनियां अपनी गतिविधियों के दायरे का विस्तार करने, ऐसे बाजार तक पहुँच प्राप्त करने जो हमारे देश की तुलना में लगभग 4 गुना बड़ा है, तथा अन्य उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपने व्यवसाय को पड़ोसी देश में भी विस्तारित कर रहे हैं। इसके साथ ही एकीकृत राज्य रजिस्टर के आंकड़ों के अनुसार पड़ोसी देश के कंपनियों में संस्थापक के रूप में पंजीकृत घरेलू कानूनी और निजी व्यक्तियों में से 45% से अधिक तजिकिस्तान में भी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों जारी रखे हुए हैं, तथा कानूनी संस्थानों के संस्थापक और प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसे राष्ट्रीय कंपनियों की क्षमता में वृद्धि का संकेत माना जाता है। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से उज्बेकिस्तान में तजिकिस्तान के कानूनी और निजी व्यक्तियों के भागीदारी वाले उद्यमों की संख्या में वृद्धि मुख्यतः उद्यमियों के विवेकपूर्ण चयन से संबंधित है। यही तथ्या इस बात का प्रमाण है कि ताजिक उद्यमी उज्बेकिस्तान में भी विकास और अतिरिक्त लाभप्रदता के लिए एक अधिक व्यापक और संभावनाशील बाजार देखते है। उज्बेकिस्तान आकर्षण क्षेत्र की नीति के माध्यम से निकात और दूर विदेशों से उद्यमियों तथा निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। उदाहरण के लिए 1 जनवरी 2026 तक उज्बेकिस्तान में कजाकिस्तान के कानूनी और निजी व्यक्तियों के निवेश से 1,220 से अधिक कंपनियां पंजीकृत की गई है, जो सन 2024 की तुलना में 157 उद्यम अधिक है। इस सूचक के आधार पर कजाकिस्तान उन 4 प्रमुख देशों में शामिल है जिनके निवेश सबसे अधिक है, जिनमें चीन, रूस और तुर्की भी शामिल है। ये उल्लेखनीय है कि उज्बेकिस्तान में निवेश की मात्रा के आधार पर चीन 33%, रूस 10.0%, तुर्की 5.2%, सऊदी अरब 4.7%, नेदरलैंड्स 3.7% तथा जर्मनी 3.3% हिस्सेदारी के 7 प्रमुख स्थानों पर है। तजिकिस्तान में भी गंभीर सुधारों के कार्यान्वयन और अर्थव्यवस्था के विकास के कारण हाल के वर्षों में उद्यमशीलता संस्थानों की संख्या लगातार बढ़ी है। विशेष रूप से एकीकृत राज्य रजिस्टर के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2026 तक तजिकिस्तान में आर्थिक इकाइयों की कुल संख्या 3,41,000 तक पहुंच गई है, जो सन 2025 की शुरुआत की तुलना में 15.8,000 अधिक है। ये भी उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी 2026 तक तजिकिस्तान में उज्बेकिस्तान के कानूनी और निजी व्यक्तियों के निवेश से स्थापित संस्थाओं की संख्या 155 तक पहुंच गई, जो सन 2025 की शुरुआत की तुलना में 20 अधिक है। वर्ष 2025 में इन संस्थाओं द्वारा कुल मिलाकर 3.80 करोड़ सामान्य से अधिक करों की गणना की गई है और उन्हें बजट में जमा किया गया, जो सन 2024 के तुलना में 78,00,000 सामान्य अधिक है। गणराज्य के नागरिकों द्वारा अन्य देशों में व्यवसाय स्थापित करने के साथ साथ 1 जनवरी 2026 तक तजिकिस्तान में व्यापारी साझेदारों और पड़ोसी देशों के कानूनी तथा निजी व्यक्तियों के निवेश से 3,500 से अधिक उद्यमशीलता संस्थाएं स्थापित की गई है। इनमें चीन के 1,117, रूसी के 403, अफगानिस्तान के 424, ईरान के 328, तुर्की के 157, उज्बेकिस्तान के 155 तथा कजाकिस्तान के 109 उद्यम शामिल है। कुल मिलाकर लगभग 90 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा आर्थिक इकाइयां स्थापित की गई है, जो वर्तमान में प्रभावी रूप के कार्यरत है। हमारे गणराज्य और पड़ोसी देश में उद्यमशीलता गतिविधियों की वर्तमान स्थिति का
विश्लेषण ये दर्शाता है कि ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध साधारण वस्तु विनिमय के चरण से आगे बढ़कर पूंजी एकीकरण और संयुक्त उद्यमों के स्थापना के स्तर तक पहुंच चुकी है और भविष्य में भी इस प्रक्रिया के और अधिक विकसित होने की संभावना है। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे टिप्पणी ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग के बारे में। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहे, हमारे रेडियो के साथ रहे।

नमस्ते प्यारे सुनने वालों, याद दिलाना है कि आप सुन रहे रेडियो आवाज ताजिक और आपका स्वागत है हमारे सांस्कृतिक भाग में। अभी हमने तय किया कि आपको एक महान विज्ञान ज़करिया राज़ी के जीवन के बारे में प्रस्ताव करेंगे। हमारे साथ रहे।

यदि हम अपने पूर्वजों के इतिहास की ओर मुड़ते हैं तो हम पाएंगे कि उन्होंने विज्ञान के विभिन्न विषयों में मूल्यवान और दुर्लभ उपलब्धियां हासिल की। इस संबंध में अध्ययन के अपने यादगार है कि महान महात आज की पीढ़ियों के लिए उनमें से अबू बकर मोहम्मद ज़करिया अल राज़ी का जीवन और वैज्ञानिक कार्य है। अबू बकर मोहम्मद ज़करिया अल राज़ी को पर्शिया, तजकिस्तान और दुनिया के सबसे महान और जाने माने डॉक्टरों, फिलोसोफर और नेचुरलिस्ट में से एक माना जाता है। उन्होंने अलग अलग साइंस के विकास में अहम योगदान दिया और उन्हें मेडिसिन और नेचुरल साइंस के पायनियर में से एक माना जाता है। अबू बकर मोहम्मद इब्न ज़करिया इब्न याहिया अल राज़ी का जन्म 28 अगस्त 251 हिजरी को रिया शहर में एक कारीगर परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन और जवानी अपनी मातृभूमि में बिताई है। किताब अल बीत अल मंसूरी में दी गई जानकारी से पता चलता है कि ये विद्वान अपनी जिंदगी के शुरुआती सालों में एक ज्वेलर और मनी चेंजर के पेशे में थे और एक समय पर उन्हें कीमिया में दिलचस्पी हो गई और उन्होंने केमिस्ट्री की पढ़ाई की। बचपन से ही रज़ी को किताबों, लेखों, क्लबों और बासों के जरिए सांस और लेक्चर सीखने में खास दिलचस्पी थी। उनकी जिज्ञासी और सीखने की इच्छा एक पाल के लिए भी उनकी दूर नहीं।

याद दिलाते कि आप रेडियो आवाज़ी ताजिक की हिंदी भाग को सुन रहे हैं। रेडियो आवाज़ी ताजिक रोज आठ भाषाओं में अपने कार्यक्रम आपके लिए पेश करता है। संबूसा का दिलचस्प इतिहास, एक ताजिक भोजन जो दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ।

सम्बोसा या दूसरे शब्दों में समसा, समोसा और सोनबोस एक ऐसा भोजन है जिसकी जड़ें इतिहास में जाती है और हर कोई किसी साबुत से इसे इस या उस देश का उत्पाद मानता है। लेकिन सच ये है कि इस प्रकार के भोजन का जन्म खुरासान या दुनिया में ताजिक सभ्यता के केंद्र में हुई थी और इसका मूल रूप संबुसक है। अधिकांश वैज्ञानिक इस प्रकार के भोजन का श्रेय फर्स और ताजिक को देते हैं और इसे इस धारणा को भी बल मिलता है कि ये भोजन ताजिकों का है। मानव जाति के इतिहास में पहली बार संबुसा का नाम, जो आज तक बिना किसी बदलाव के हम तक पहुंचा है, हजार साल पहले ताजिक वैज्ञानिक अब्दुल फजल बैहकी द्वारा लिखा गया था। इस्माइल गुरगानी, एक अन्य प्रसिद्ध ताजिक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक जखीराई खुरज़मशाही में इस नाम से संबुसा का उल्लेख किया और स्पष्ट रूप से अनिद्रा के इलाज के लिए संबुसाई अलाफिन यानी जड़ी बूटी वाले संबुसा खाने की सलाह दी। यदि आप अनिद्रा से परेशान हैं, तो कुक पत्तियों, कद्दू और पालक से संबुसा बनाइए। ये वही संबुसा है जिसे आज हम ताजिकिस्तान में उसी नाम से बोलते हैं, जो 1000 साल से नहीं बदला है। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में संबुसा को खुरासान से मुस्लिम व्यापारियों द्वारा भारत लाया गया और ये उनके पसंदीदा व्यंजनों में से एक बन गया। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसराव देहलवी ने दरबारियों और रईसों के बीच एक लोकप्रिय भोजन के रूप में संबुसा का उल्लेख किया। इसके अलावा 14वीं शताब्दी की शुरुआत में इब्न बतूता ने भारत के अपने सफरनामे में अतः में पिसा हुआ मांस, प्याज, बादाम, अखरोट के साथ तैयार एक छोटा सा व्यंजन संबुसा का उल्लेख किया। विशेषज्ञों के अनुसार संबुसा शब्द के जड़े आया भाषा में है और इसे मूल रूप से संपुत्जा कहा जाता था। संपुत्जा एक सैंडविच जैसा भोजन था जिसे मुख्य भोजन के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। समय के साथ संबुसा शब्द बदल कर संबुसा या संबुसोक फिर संबुसा हो गया। आजकल संबुसा एक प्रसिद्ध भोजन है जो पतले आटे या चपाती, कीमा हुआ मांस, आलू, सब्जियां आदि के साथ तेल में तला हुआ या ओवन में बेक किया जाता है। आज संबुसा दुनिया भर में प्रसिद्ध है और दुनिया के कई देशों जैसे मध्य पूर्व, भारत और उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में पकाया और बेचा जाता है। दुनिया के कुछ देशों में संबुसा को भारतीय के रूप में जाना जाता है और विभिन्न रूपों में आधुनिक संबुसा को भारतीय संबुसा माना जाता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों और उपयोगकर्ताओं की राय के अनुसार आधुनिक तकनीकों की प्रगति के साथ इस समस्या से पर्दा उठ गया है और वे स्वयं इस प्रकार के भोजन की उत्पत्ति को इसकी मूल मातृभूमि का श्रेय देते हैं। सामाजिक नेटवर्क में एक शोध के अनुसार कुछ भारतीय विशेषज्ञ इस शब्द के मूल में संदेह करते हैं। एक विशेषज्ञ ने कहा है, ये आश्चर्य की बात है, हमारा अपना समोसा कभी हमारा था नहीं। सुगंधित भोजन जिसे हम दक्षिण एशिया की मिट्टी से समझते थे, वास्तव में सदियों पहले मध्य एशिया से यहाँ आया था। ये एक ऐसा भोजन है जिसने एक लंबा सफर तय किया है और हर प्रसिद्ध यात्री की तरह रास्ते में अपने पद चिन्ह छोड़ा है। मिस्र से लीबिया तक और मध्य एशिया से भारत तक भरवा त्रिकोण ने विभिन्न नामों से वैश्विक लोकप्रियता हासिल की है। प्यारे श्रोताओं, ताजिक भोजन संबुसा के इतिहास के बारे में हमारे प्रोग्राम को इस समय आपने सुना। अब एक गाना सुनकर कार्यक्रम को जारी देंगे, हमारे साथ रहिए।

0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: से प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज ताजी की हिंदी भाग की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प बयान, विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां इस प्रोग्राम के दीते राम जोर प्रोड्यूसर शेर अली वाली शेर आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे।

नमस्ते प्यारे सुनने वालों, आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। अभी हमने तय किया कि आपको तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के आर्थिक सहयोग के बारे में जानकारी प्रस्तुत करेंगे, हमारे साथ रहे। तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग हाल के वर्षों में दोनों देशों की विदेश नीति और आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण दिशाओं में से एक बन गया है। दोनों देशों के संबंध जो पहले कुछ हद तक सीमित थे, आज मित्रता, अच्छे पड़ोसी संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के आधार पर विकसित हो रहे हैं। विशेष रूप से खुले द्वार की नीति और क्षेत्रीय सहयोग के विस्तार के बाद उद्यमशीलता गतिविधियों, निवेश और वस्तुओं के आदान प्रदान में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। आर्थिक संबंधों के विकास का एक प्रमुख संकेतक द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में वृद्धि है। आज तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्यात और आयात कर रहे हैं। तजिकिस्तान मुख्यतः बिजली, कृषि उत्पाद, एल्यूमिनियम, फल, सब्जियां तथा कुछ औद्योगिक उत्पाद उज्बेकिस्तान को निर्यात करता है। दूसरी ओर उज्बेकिस्तान तजिकिस्तान को मशीनरी, औद्योगिक उत्पाद, निर्माण सामग्री, ईंधन और खाद्य सामग्री निर्यात करता है। सीमा संबंधों में सुधार, सीमा चौकियों का खुलना और लोगों की आवाजाही में सुविधा ने व्यापार और उद्यमशीलता गतिविधियों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। आर्थिक संबंधों के विकास में संयुक्त निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। हाल के वर्षों में तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के संयुक्त उद्यमों की संख्या में वृद्धि हुई है। उज्बेकिस्तान में ताजिक नागरिकों और उद्यमियों के पूंजी से सैकड़ों कंपनियां कार्य कर रही है। ये कंपनियां मुख्यतः व्यापार, उद्योग, निर्माण, सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सक्रिय है। इसी प्रकार तजिकिस्तान में भी उज्बेक नागरिकों और कंपनियों के निवेश से अनेक उद्यम स्थापित किए गए है। ऐसे उद्यमों की गतिविधियां नए रोजगार सृजन, उत्पादन में वृद्धि और उद्यमशीलता के विकास में सहायक है। आधिकारिक अंकारों के अनुसार उज्बेकिस्तान में तजिकिस्तान के कानूनी और निजी व्यक्तियों के भागीदारी वाले 400 से अधिक उद्यम पंजीकृत है। इनमें से अधिकांश व्यापार, उद्योग, निर्माण और संचार क्षेत्रों में कार्यरत है। इसके साथ ही तजिकिस्तान में भी उज्बेक नागरिकों और कंपनियों के निवेश से 150 से अधिक संस्थाएं सक्रिय है। ये अंकारें इस बात का प्रमाण है कि दोनों देशों के उद्यमी एक दूसरे के बाजारों में गहरी रुचि रखते हैं और अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए नए अवसरों का उपयोग कर रहे हैं। आर्थिक सहयोग के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक व्यापक बाजार और निवेश के अनुकूल अवसरों की उपलब्धता है। उज्बेकिस्तान की जनसंख्या 3,70,00,000 से अधिक है, जो ताजिक उद्यमियों के लिए एक विशाल उपभोक्ता बाजार का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए अनेक ताजिक कंपनियां उज्बेकिस्तान में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रही है और अपने उत्पादों तथा सेवाओं को पड़ोसी देश के बाजार में पहुंचाने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर उज्बेक उद्यमी भी तजिकिस्तान के बाजार में रुचि रखते हैं, क्योंकि तजिकिस्तान प्राकृतिक संसाधनों, जल विद्युत क्षमता और महत्वपूर्ण पारगमन स्थिति से समृद्ध है। औद्योगिक क्षेत्र भी आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान निर्माण सामग्री, वस्त्र उद्योग, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण तथा औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्रों में संयुक्त सहयोग का विस्तार कर रहे हैं। संयुक्त औद्योगिक उद्यमों की स्थापना, कच्चे माल के प्रभावी उपयोग और प्रतिस्पर्धी उत्पादन के विकास में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का विशेष महत्व है। तजिकिस्तान के पास विशाल जल विद्युत संसाधन है और वो उज्बेकिस्तान सहित पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात कर सकता है। इस क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को मजबूत करता है। साथ ही दोनों देशों के बीच परिवहन और पारगमन नेटवर्क का विकास, माल और वस्तुओं के परिवहन को बढ़ाने तथा आर्थिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायक है।
تاجکستان اور ازبکستان کے بیچ آرتھک سہیوگ کیول راشٹری آرتھک ویوستھاؤں کے وکاس کے لیے ہی نہیں بلکہ کھیتری استھرتا اور ایکیکرن کو مضبوط کرنے کے لیے بھی مہتوپورن ہے۔ دونوں دیشوں کے بیچ مہتوپورن اور لابھکاری سامبان ویاپار نویش روزگار سریجان اور لوگوں کے جیون استر میں سدھار کو پروتساہت کرتے ہیں۔ آج تاجکستان اور ازبکستان کے بیچ آرتھک اور ویاپاری سامبان سادھارن وستو ونیمائے سے آگے بڑھ کر پونجی ایکیکرن سنیوک ادیموں کی استھاپنا اور رنانیتی سجیداری کے استر تک پہنچ چکے ہیں۔ دونوں دیشوں کے وشال آرتھک سمبھاوناؤں اور راجنیتی اچھا شکتی کو دیکھتے ہوئے یہ اپیکشا کی جاتی ہے کہ بھوشیہ میں تاجکستان اور ازبکستان کے بیچ آرتھک اور نویش سامبان اور ادھک وستارت ہوں گے۔ انتر راجری سمبندوں کے وکاس کے آدھونک چرن میں کھلے دیوار کی نیتی کو لاگو کرنے تتھا ادیم شیلتا کے وستار اور پارسپرک نویش میں وردھی کے لیے انوکول پرستھتیاں بننے کے پرینام سوروپ تاجکستان اور ازبکستان کے بیچ آرتھک اور ویاپاری سہیوگ گناتمک روپ سے نئے استر تتھا رنانیتی سجیداری تک پہنچ گیا ہے۔ آج کل سنیوک ادیموں کی سنکھیا اور پڑوسی دیشوں کے بازاروں میں گھریلو ویوسایوں کی پہنچ لگاتار بڑھ رہی ہے۔ یہ کارک آرتھک پربندھان پرنالی میں کیے گئے سنرچناتمک سدھاروں کے پرینام سوروپ سمبھو ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ کمیٹی آف اسٹیٹسٹکس آف ازبکستان کے انکاروں کے انوسار 1 فروری 2026 تک پڑوسی گنرجیا میں تاجکستان کے قانونی اور نجی ویکتیوں کی پونجی کی بھاگیداری والے 410 ادیم پنجیکرت کیے گئے ہیں۔ ان میں 308 سیمت دایتو کمپنیاں اور 102 سنیوک ادیم شامل ہیں۔ ان ادیموں میں سے 144 ویاپار کھیتر 98 ادیوگ 43 نرمان تتھا 33 سوچنا اور سنچار کھیتر میں کریارت ہے۔ یہ الیکھ کرنا اچھت ہوگی کہ ازبکستان میں تاجکستان کے ناگرکوں کی بھاگیداری والے ادیموں کی ادھک سنکھیا کا مکھیہ کارن سامانیہ آرتھک پرکریاؤں سے جڑا ہوا ہے۔ تلنا کے لیے ازبکستان کی جن سنکھیا 3.77 کروڑ سے ادھک ہے۔ اس لیے پڑوسی دیش میں ادیمشیلتا گتیویدھیوں کے وکاس کے لیے افسر اور پرستھتیاں ہمارے گنرجیا کی تلنا میں اپیک

के रूप में पंजीकृत घरेलू कानूनी और निजी व्यक्तियों में से 45% से अधिक तजिकिस्तान में भी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों जारी रखे हुए है तथा कानूनी संस्थानों के संस्थापक और प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे है। इसे राष्ट्रीय कंपनियों की क्षमता में वृद्धि का संकेत माना जाता है। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से उज्बेकिस्तान में तजिकिस्तान के कानूनी और निजी व्यक्तियों के भागीदारी वाले उद्यम की संख्या में वृद्धि मुख्यतः उद्यमियों के विवेकपूर्ण चयन से संबंधित है। यही तथ्या इस बात का प्रमाण है कि ताजिक उद्यमी उज्बेकिस्तान में भी विकास और अतिरिक्त लाभप्रदता के लिए एक अधिक व्यापक और संभावनाशील बाजार देखते हैं। उज्बेकिस्तान आकर्षण क्षेत्र की नीति के माध्यम से निकट और दूर विदेशों से उद्यमियों तथा निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। उदाहरण के लिए 1 जनवरी 2026 तक उज्बेकिस्तान में कजाकिस्तान के कानूनी और निजी व्यक्तियों के निवेश से 1,220 से अधिक कंपनियां पंजीकृत की गई है, जो सन 2024 की तुलना में 157 उद्यम अधिक है। इस सूचक के आधार पर कजाकिस्तान उन 4 प्रमुख देशों में शामिल है जिनके निवेश सबसे अधिक है, जिनमें चीन, रूस और तुर्की भी शामिल है। ये उल्लेखनीय है कि उज्बेकिस्तान में निवेश की मात्रा के आधार पर चीन 33%, रूस 10.0%, तुर्की 5.2%, सऊदी अरब 4.7%, नेदरलैंड्स 3.7% तथा जर्मनी 3.3% हिस्सेदारी के 7 प्रमुख स्थानों पर है। तजिकिस्तान में भी गंभीर सुधारों के कार्यान्वयन और अर्थव्यवस्था के विकास के कारण हाल के वर्षों में उद्यमशीलता संस्थानों की संख्या लगातार बढ़ी है। विशेष रूप से एकीकृत राज्य रजिस्ट्रार के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2026 तक तजिकिस्तान में आर्थिक इकाइयों की कुल संख्या 3,41,000 तक पहुँच गई है, जो सन 2025 की शुरुआत की तुलना में 15.8% आज ही के। ये भी उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी 2026 तक तजिकिस्तान में उज्बेकिस्तान के कानूनी और निजी व्यक्तियों के निवेश से स्थापित संस्थाओं की संख्या 155 तक पहुंच गई, जो सन 2025 की शुरुआत की तुलना में 20 अधिक है। वर्ष 2025 में इन संस्थाओं द्वारा कुल मिलाकर 3.80 करोड़ सामानी से अधिक करों की गणना की गई है और उन्हें बजट में जमा किया गया, जो सन 2024 के तुलना में 78 लाख सामानी अधिक है। गणराज्य के नागरिकों द्वारा अन्य देशों में व्यवसाय स्थापित करने के साथ साथ 1 जनवरी 2026 तक तजिकिस्तान में व्यापारी साझेदारों और पड़ोसी देशों के कानूनी तथा निजी व्यक्तियों के निवेश से 3,500 से अधिक उद्यमशीलता संस्थाएं स्थापित की गई है। इनमें चीन के 1,117, रूसी के 403, अफगानिस्तान के 424, ईरान के 328, तुर्की के 157, उज्बेकिस्तान के 155 तथा कजाकिस्तान के 109 उद्यम शामिल है। कुल मिलाकर लगभग 90 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा आर्थिक इकाइयां स्थापित की गई है, जो वर्तमान में प्रभावी रूप के कार्यरत है। हमारे गणराज्य और पड़ोसी देश में उद्यमशीलता गतिविधियों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण ये दर्शाता है कि तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध साधारण वस्तु विनिमय के चरण से आगे बढ़कर पूंजी एकीकरण और संयुक्त उद्यमों के स्थापना के स्तर तक पहुँच चुकी है और भविष्य में भी इस प्रक्रिया के और अधिक विकसित होने की संभावना है। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे टिप्पणी तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग के बारे में। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहे, हमारे रेडियो के साथ रहे।

नमस्ते प्यारे सुनने वालों, याद दिलाना है कि आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज ताजिक और आपका स्वागत है हमारे सांस्कृतिक भाग में। अभी हमने तय किया कि आपको एक महान विज्ञान ज़करिया राज़ी के जीवन के बारे में प्रस्ताव करेंगे। हमारे साथ रहे।

यदि हम अपने पूर्वजों के इतिहास की ओर मुड़ते हैं तो हम पाएंगे कि उन्होंने विज्ञान के विभिन्न विषयों में मूल्यवान और दुर्लभ उपलब्धियां हासिल की। इस संबंध में अध्ययन के अपने यादगार है कि महान महात आज की पीढ़ियों के लिए उनमें से अबू बकर मोहम्मद ज़करिया अल राज़ी का जीवन और वैज्ञानिक कार्य है। अबू बकर मोहम्मद ज़करिया अल राज़ी को पर्शिया, तजिकिस्तान और दुनिया के सबसे महान और जाने माने डॉक्टरों, फिलोसोफर और नेचुरलिस्ट में से एक माना जाता है। उन्होंने अलग अलग साइंस के विकास में अहम योगदान दिया और उन्हें मेडिसिन और नेचुरल साइंस के पायनियर में से एक माना जाता है। अबू बकर मोहम्मद इब्न ज़करिया इब्न याहिया अल राज़ी का जन्म 28 अगस्त 251 हिजरी को रिया शहर में एक कारीगर परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन और जवानी अपनी मातृभूमि में बिताई है। किताब अल बीत अल मंसूरी में दी गई जानकारी से पता चलता है कि ये विद्वान अपनी जिंदगी के शुरुआती सालों में एक ज्वेलर और मनी चेंजर के पेशे में थे और एक समय पर उन्हें कीमिया में दिलचस्पी हो गई और उन्होंने केमिस्ट्री की पढ़ाई की। बचपन से ही रज़ी को किताबों, लेखों, क्लबों और बासों के जरिए सांस और लेक्चर सीखने में खास दिलचस्पी थी। उनकी जिज्ञासी और सीखने की इच्छा एक पाल के लिए भी उनकी दूर नहीं।

याद दिलाते कि आप रेडियो आवाजी ताजिक की हिंदी भाग को सुन रहे हैं। रेडियो आवाजी ताजिक रोज आठ भाषाओं में अपने कार्यक्रम आपके लिए पेश करता है। संबूसा का दिलचस्प इतिहास, एक ताजिक भोजन जो दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ।

سمبوسہ یا دوسرے شبدوں میں سمسا، سموسا اور سنبوس ایک ایسا بھوجن ہے جس کی جڑیں اتہاس میں جاتی ہے اور ہر کوئی کسی ثبوت سے اسے اس یا اس دیش کا اتپت مانتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ اس پرکار کے بھوجن کا جنم خراسان یا دنیا میں تاجک سبھیاتا کے کیندر میں ہوئی تھی اور اس کا مول روپ سنبوسک ہے अधिकांश वैज्ञानिक इस प्रकार के भोजन का श्रेय फर्स और ताजिक को देते हैं और इसे इस धारणा को भी बल मिलता है कि ये भोजन ताजिकों का है मानव जाति के इतिहास में पहली बार संबूसा का नाम जो आज तक बिना किसी बदलाव के हम तक पहुंचा है हजार साल पहले ताजिक वैज्ञानिक अब्दुल फजल बैहकी द्वारा लिखा गया था इस्माइल गुरगानी एक अन्य प्रसिद्ध ताजिक वैज्ञानिक ने اپنی پستک ذخیرائی خوارزمشاہی میں اس نام سے سمبوسہ کا الیکھ کیا اور سپشت روپ سے انیندرا کے علاج کے لیے سمبوسہ الافین یعنی جڑی بوٹی والے سمبوسہ کھانے کی صلاح دی یعنی آپ انیندرا سے پریشان ہیں تو کوک پتیوں کدو اور پالک سے سمبوسہ بنائیے یہ وہی سمبوسہ ہے جسے آج ہم تاجکستان میں اسی نام سے بولتے ہیں جو ایک ہزار سال سے نہیں بدلا ہے 13वीं शताब्दी की शुरुआत में सनबूसा को खुरासान से मुस्लिम व्यापारियों द्वारा भारत लाया गया और ये उनके पसंदीदा व्यंजनों में से एक बन गया 13वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसराव देहलवी ने दरबारियों और रईसों के बीच एक लोकप्रिय भोजन के रूप में सनबूसा का उल्लेख किया इसके अलावा 14वीं शताब्दी की शुरुआत में इब्न बतूता ने भारत के अपने सफरनामे में अतः में पिसा हुआ मांस प्याज बादाम अखरोट के साथ तैयार एक छोटा सा व्यंजन सनबूसा का उल्लेख किया विशेषज्ञों के अनुसार सनबूसा शब्द के जरे आया भाषा में है और इसे मूल रूप से संपुत्जा कहा जाता था संपुत्जा एक सैंडविच जैसा भोजन था जिसे मुख्य भोजन के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी समय के साथ सनबूसा शब्द बदलकर सनबूसा या सनबूसोक फिर सनबूसा हो गया आजकल सनबूसा एक प्रसिद्ध भोजन है जो पतले आटे या चपाती कीमा हुआ मांस आलू सब्जियां आदि के साथ तेल में तला हुआ या ओवन में बेक किया जाता है आज सनबूसा दुनिया भर में प्रसिद्ध है और दुनिया के कई देशों जैसे मध्य पूर्व भारत और उत्तरी अफ्रीका यूरोप और अमेरिका में पकाया और बेचा जाता है दुनिया के कुछ देशों में सनबूसा को भारतीय के रूप में जाना जाता है और विभिन्न रूपों में आधुनिक सनबूसा को भारतीय सनबूसा माना जाता है हालांकि कुछ विशेषज्ञों और उपयोगकर्ताओं की राय के अनुसार आधुनिक तकनीकों की प्रगति के साथ इस समस्या से पर्दा उठ गया है और वे स्वयं इस प्रकार के भोजन की उत्पत्ति को इसकी मूल मातृभूमि का श्रेय देते हैं सामाजिक नेटवर्क में एक शोध के अनुसार कुछ भारतीय विशेषज्ञ इस शब्द के मूल में संदेह करते हैं एक विशेषज्ञ ने कहा है ये आश्चर्य की बात है हमारा अपना समोसा कभी हमारा था नहीं सुगंधित भोजन जिसे हम दक्षिण एशिया की मिट्टी से समझते थे वास्तव में सदियों पहले मध्य एशिया से यहाँ आया था ये एक ऐसा भोजन है जिसने एक लंबा सफर तय किया है और हर प्रसिद्ध यात्री की तरह रास्ते में अपने पद चिन्ह छोड़ा है मिस्र से लीबिया तक और मध्य एशिया से भारत तक भरवा त्रिकोण ने विभिन्न नामों से वैश्विक लोकप्रियता हासिल की है प्यारे श्रोताओं ताजिक भोजन सम्बूसा के इतिहास के बारे में हमारे प्रोग्राम को इस समय आपने सुना अब एक गाना सुनकर कार्यक्रम को जारी देंगे हमारे साथ रहिए